0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराई। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: का हुई बाबू अपने कल का लाइट रही अपने का करे कल का लाइट रही ले भुइया में के हो का करे भुइया में धनवा नाल बाटी
2: दादू हमारे घास काटा रही मौसम पका दिन दादू हाली क्या करना हुई यही ना सकते हो उपचार के
1: ओहो ऐसी बेला में एम्बुलेंस और चार गोरिया मोटर जो खोज के अस्या लाग के बैठनी हुई यह लगे बस्ती में मोर एक जाने मोटरसाइकिल वाला संघरिया बा फोन कई दादू अपने नहीं आते है ना संघरिया ध्यान दी। हेलो मुकेश तू जत ही मोटरसाइकिल लेके यहाँ आ जाओ तो यहाँ एक जना बाबू है ना सपवा काट के ना इमरजेंसी पर गिन तुरंत ही उपचार केंद्र में ले जाए पड़ल राजमार्ग 84 मीटर पश्चिम बाव पांचर बाटी ना हमरा मुकेश जत ही आओ हाँ सबको काम छोड़ कर
3: बेटा संतोष मैं मोटरसाइकिल लेके आई जत्ते
1: सुनी बाबू सपो कटलक मने है ना जत्रा साइकिल जत ही एंटी वेनम उपलब्ध हुई उपचार केंद्र में ले जा रहे पड़ता ऐसी बेला में सबसे झटते हुई ना यातायात के साधन वाजे पड़ता यदि मोटरसाइकिल के व्यवस्था बाकल से अपने वो सवारी चालक के बीच सपो कटलक मने है ना सुरक्षित हुई ना मेर से बैठा कर तुरंत उपचार केंद्र पुगाई पड़ता। मुकेश मोटरसाइकिल लेके आ गई मोर भर पर न संघरिया मैं तुरंत बेरे में है ना मुकेश के मोटरसाइकिल में बीच ऐसी बैठा कर उपचार केंद्र पुगा डर हूँ अपने मोटरसाइकिल लेके ओरी आए
4: याद करी 7-10 से मोटरसाइकिल स्वयं से डी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र जाकर जान बचाई
5: यदि समय में जो उपचार कर सकल से 7-10 लाख मनी बचाई सक दी था वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर थे कम कर सक दी था 7-10 लाख मने है ना छट्ट से छट्ट उपचार केंद्र में ले जा डारी यही ले वो मने एक जीवन बचाए भारी मदद कर था विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snakebitenepal.org में जाख आवश्यक जानकारी लिए सकती था।
6: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
7: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसीसँग सहकार्य गरौ।
8: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
9: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
8: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
9: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
10: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 98584 89213, इमेल ocmcTikapur@gmail.com।

0: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
1: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
0: ए हो त, कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
0: अब त म ढुक्क।
2: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
1: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
3: के तपाईलाई थाहा छ,
4: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर, मानिसलाई असर गर्छ।
3: हो र?
4: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
3: अनि
4: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
3: के छ त विकल्प?
4: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौ।
3: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
4: अहँ हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
3: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
4: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, सरसफाई शाखा, टिकापुर, कैलाली।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
5: मैं नहीं जाइं, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
0: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई तो, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा, मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था, वही तोर समस्या फेन अस्ते बा, जैबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा प्रत्येक महिना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला, यौन, कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खटिरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: से कबू का पिए रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटा का आज का कना हो बाबा के ओष्ट बाटी गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराइटी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लनबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरास बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
4: साउन 16 गते तेस्रो शनिवार का दिन
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
3: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
5: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला
4: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-00-08 र 98-25-63-77-72

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उपकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अभ्यर्थ खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर मालपोट में सेवा प्रवाह में ढिला सुस्ती हुई नकरलक सेवा ग्राही हुकरण की गुनासो सेवा प्रभावकारी बनाई पना प्रयासरत रह कार्यालय की कहाई। देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव कायम आज देश के कुछ स्थान में भारी पानी पर्ना संभावना। गणेश यादव के परिवार और सरकार बीच सात बुदे सहमति ओ सुदूरपश्चिम में नेकपा भीतर के किसलो खगराज मुख्यमंत्री में रोकना मोर्चाबंदी। टीकापुर मालपोट में सेवा प्रवाह में ढिलाई हुई नकरला सेवाग्राही गुनासो करल बाटें। गर्मी के समय में लंबा समय सम लाइन में बैठे पर्ना कठिनाई रलकोर्से सेवा लेना में आयल सेवाग्राही हुकरा बटोटियाल बाटें। एक ओर सेवा लेना लंबा समय लाइन लागे पर्ना औरावर समेत साता में दुई दिन सार्वजनिक विदा हुईना समस्या के कारण से वहां हुकरा समेत गुनासो करती बाटें। सेवाग्राही हुकरा अक्केठो काम बार बार कर पर्ना रलकोर्से सेवाग्राही पुष्पा विस्तार से काम में ढिला सुस्ती हुई ओ समेत टोकन सिस्टम बनाई पर्ना माग करने बाटे। राधिका भंडारी से अक्केठो काम केलक आठ दिन सम जाई पर्ना समेत बटोले बाटे। दूर से गाड़ी चढ़के खर्च करके एकठो काम केलक ढेर समय खर्च पर्ना समस्या समाधान हुई पर्ना कमला भंडारी के कहाईबा। प्रकाश जैसीफे तमाम वाहनामा सेवा प्रवाहमा ढिलाई हुई तिरलक बटोले बाटे। मालपोट कार्यालय के सूचना अधिकारी प्रेम प्रकाश सिंह से आजकल काम के खासे चाप नहीं रलक को समय में काम हुईना करलक रलस फेन गुनासो सुनवाई करना हो हाली सेवा प्रवाह समेत प्रयास हुईना बताइले बाटे। गृहमंत्री सुदन गुरूंग सिराहा के गोल बाजार में गोली लाग के मृत्यु हुई। गणेश यादव के परिवार संगे आज बुधे सहमति करल बाटे। लहानमा जिल्ला सुरक्षा समिति के बैठक पश्चात गैल रात के गृहमंत्री गुरूंग यादव के घर सिराहा के औरहाई गांवपालिका के तुलसीही समेत पुगल रहें। मृतक का यादव के बाबा ओ दाई तथा आफन्ता हुकन संगे हुईला छलफल में आठ बुदे सहमति हुई गृहमंत्री के कहाईबा। मृतक के परिवार से धरपर्ना घटना के निष्पक्ष छानबीन हुई पर्ना दोषी कार्रवाई कर पर्ना क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई पर्ना मृतक का परिवार सदस्य उपरांत निःशुल्क शिक्षा के सुनिश्चित करे पर्ना लगायत के माग मा समेत सहमति हुई गृहमंत्री गुरूंग जानकारी देने बाटे। विभाग के सरकार की ओर से मृतक का बाबा और दाई के निःशुल्क उपचार करना परिवार के सदस्य उपरांत रोजगारी के सुनिश्चित करना सहमति हुई बताइल बा। गोल बाजार घटना से छानबीन में कोनो कमजोरी नहीं हुई प्रतिबद्धता व्यक्त करती गृहमंत्री गुरूंग से घटना में दोषी कार्रवाई करना बटोले बाटे। सुनसरी के दुवानगंज में हुई घटना के विरोध में गोल बाजार में प्रदर्शन करती रलक बेला यह सावन 14 गते गोली लाग के यादव के समेत मृत्यु हुई रह। खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनती रही सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएफ का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
2: शिक्षा छात्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, नेपाली, हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, डेभलपमेन्ट स्टडीज, सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे। कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गतेदेखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्याहन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस।
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने।
1: उपचार कक्ष, ई लाइब्रेरी, फ्री वाईफाई, प्रोजेक्टर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा, शुद्ध खाने पानी, प्राथमिक उपचार कक्ष, व्यवस्थित क्यान्टिन, खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको।
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने।
1: कक्षा 12 पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088।
1: टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस, टिकापुर, कैलाली।
3: यो खाने मन त कहाँ छ र, तर के गर्नु, जीवन एक

0: पनि सोच्दैछु म।
1: ओहो, तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस जस्तै यार। अब म पनि कुलत छोड्छु, आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु, भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
2: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
3: टिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
4: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
3: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर। भागीरथी मेडिकल टिकापुरमा विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर टिकापुरमा भदौ 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन नेपालगंज मेडिकल कलेजमा कार्यरत धेरै अनुभवी र सिनियर मानसिक रोग, मिर्गी रोग तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर तनवीर अहमद खान एमबीबीएस एमडी न्यूरो साइकेट्री आउने भएकोले निम्न समस्या भएका बिरामीहरूले समयमै नाम लेखाई मौकाको फाइदा उठाउनका लागि सबैमा जानकारी गराइन्छ। समस्याहरू मिर्गी रोग, मुखबाट फिज आएर घाँटी बाङ्गो भई बेहोस हुनु, मुटुको ढड़कन कम वा ज्यादा हुनु, लामो समयदेखि टाउको दुख्नु, छटपटी लाग्नु, जिउ झमझम हुनु, जलन हुनु, चिन्ता मान्नु, जीवनसित निराश हुनु, आत्महत्याको इच्छा लाग्नु वा प्रयास गर्नु, धेरै शंका मान्नु, कानमा बोले जस्तो लाग्नु, कोठामा एक्लै बस्न मन लाग्नु, काममा मन नलाग्नु, झर्को मान्नु, रिसाउनु, बिना कारण हाँस्नु, मुस्कुराउनु, रुनु, घर छोडेर भाग्नु, यौन इच्छाको कमी हुनु, जाँड, गाँजा, चरेस, रक्सी, ब्राउन सुगर, नशाको चक्की जस्ता कुलतलाई छोडाउने उपचार र मानसिक तथा नशा सम्बन्धी सम्पूर्ण रोगको उपचार र सल्लाह लिई सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरी निरोगी खुशी जीवनको आनन्द लिऊ। हाम्रो यहाँ इसिजी र ल्याब टेस्टको सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध छ। स्थान डाक्टर बमबहादुरको क्लिनिक भागीरथी मेडिकल सेन्टर, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमको नजिकै टिकापुर। टाढाका बिरामीहरूले नाम लेखाउन र विस्तृत जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 091-560-228-97083-58-835 र 98-685-40-777। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। डाक्टर आउने दिन भदौ 13 गते दोस्रो शनिबार।
5: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के सबसे भारी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा के आन्तरिक किचलोमा फसल बा। तत्कालीन माओवादी केन्द्राव नेकपा समाजवादी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बीच एकीकरण होके नेकपा बनल रह। प्रदेशमा लवा सरकार गठन के गृह कार्य चल लगपेरा नेकपा भित्तरभर आन्तरिक किचलो शुरू हुइल्बा। एमाले नेकपा बीचके हुइलक भागबन्द अनुसार अब बन्न सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारके नेतृत्व नेकपासे गर्न सहमति हुइल्बा। उ सहमति अनुसार अब नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टराय मुख्यमन्त्री बन्न लगभग सुनिश्चित कहलबा। मनुसाविकके माओवादी केन्द्र भित्तरके तत्कालीन समयसे लैके रहलक आन्तरिक संघर्ष से समेत किचलो फेर से सहमत समेत आइलबा। भट्टराई मुख्यमन्त्री बन्न से रोक्न मानबहादुर धामी पक्ष सक्रिय देख परलबा। स्रोतके अनुसार 12 मार्च 2080 भट्टराई तत्कालीन माओवादी केन्द्र से समेत दल नेता हुक्रन हटेन औ अपना बनलक समेत धामी फेर से उह खालके शक्ति संघर्ष आगे बढ़ेन कहलबा। कुछ दिन आगे कुछ दिन आगे धामी पक्ष से फिर से भट्टराई दल के नेता में अपना उकरा समेत मुख्यमंत्री बनना योजना आंतरिक गृह कार्य में करते लग बटवागिल बा। वहां उकरा बहुमत पुगा के भट्टराई दल के नेता बनेना खोजलक रही कल से साबिक के नागरिक उन्मुक्ति पार्टी और एकीकृत समाजवादी पार्टी के सांसद हुकरन के 7 माइल पायल पाछे रूगेल स्रोत हुक्रा बटोले बाटे। धामी पक्ष वहां संगे छुट्टा छुट्टे छलफल समेत करल रहे। साबिक के एकीकृत समाजवादी पार्टी के सांसद हुकरन फे उ प्रस्ताव समेत करगिल रह। मनो सकारात्मक जवाब न आयल पाछे ओतहाई रुकल।

0: दावी करगिलवा तत्कालीन समयमा भट्टराई दलके नेतामा हटाइबेर यी बेलामा फेसमेट उपनेता रलक अक्कल बहादुर रावल मान बहादुर धामी ओम विक्रम भत्ता शिवान सिंह ओली गीता देवी मनलाओ लक्ष्मी बीका एक ठाउँ रहै कलसे भट्टराई सहितके रमेश धामी झपट साउन्ड पुस्तकी जानकी पौडेल चारजाने भर अरू पक्षमा थर्याल रहे श्रोतके अनुसार अबके परिस्थितिमा भर सांसद संकलन यहाँ रोहर बाटै कलसे विगतमा भट्टराई दलके नेतामा हटैना सक्रिय बनलक कुछ सांसद संकलनके भत्ताके पक्षमा रहल देख परल बा साबिकके माओवादी भित्तरके संख्याके दलके नेता फेर्ना स्थिति नै हुल पाछे अब वहाँ उक्रण बीच मन्त्री पटकेला समेत दौड़धूपमा चलल बाटै धामी पक्षीयके समेत एक सांसदसे भर दलके नेता परिवर्तन गर्न अभ्यास ओ यी बीचमा करगिलक मनतर असफल यी हुइलक देखगिल पाछे फे हटलक पाछे हटलक बात स्वीकार गरे बाटै मान भारत धामी नै माओवादी दलके नेता बनलक एकीकरण हुइल पाछे खगरास एकता पाछेके दलके नेता बनल बटवागिल बा हाल देशभर मनसुनी वायुके प्रभाव रलक मौसम पूर्वानुमान महाशाखासे जनाइल बा हाल मनसुनी न्यूनचापीय रेखा पश्चिम सरदर स्थानके दक्षिण ओर ओ पूर्वके सरदर आसपास स्थानमा समेत रहल बा जकर प्रभावसे लुम्बिनी प्रदेशके तराई भूभागमा आंशिक मौसम बदलल बा कलसे बाँकी भूभागमा साधारणतया मौसम बदलन बा बागमती प्रदेशके कम स्थान हो कोशी गण्डकी कर्णाली सुरपश्चिम प्रदेशके एक दुई स्थानमा हल्का से लैके मध्यम पानी पर्दि रहल बा आज दुपहरके देशभर साधारणतया मौसम बदलल बा कलसे देशके हिमाली भूभागमा कुछ स्थान हो पहाड़ी भूभागमा ढेर स्थानमा मध्यम समके वर्षाके सम्भावना रहल बा साथै तराई भूभागमा कुछ स्थानमा चट्याङ सहित मध्यम वर्षाके सम्भावना बा बागमती गण्डकी कर्णाली सुरपश्चिम प्रदेशके पहाड़ी भूभागमा एक दुई स्थानमा भारी वर्षाके सम्भावना रहल बा आज रातकी देशभर साधारणतया मौसम बदलन बा कलसे देशकी हिमालय पहाड़ी भूभागमा कुछ स्थान र तराई भूभागमा धेरै स्थानमा चट्याङ सहित मध्यम समके वर्षाके सम्भावना बा कोशी बागमती गण्डकी प्रदेशके हिमाली पहाड़ी तराई भूभागमा मधेश प्रदेश तथा लुम्बिनी सुरपश्चिम प्रदेशके तराई भूभागमा एक दुई स्थानमा भारी वर्षा के संभावना रहल बा खोज खबर में फेर से विश्राम विश्राम पाछ फेर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीगा प्रेफम
1: मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च नवीकरण तथा नयाँ दर्ता बारे अत्यन्त जरूरी सूचना
2: टिकापुर नगरपालिकाको मृगौला प्रत्यारोपण गरेका डायलिसिस गराइरहेका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको औषधि उपचार बापत खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तोके बमोजिम उपचार बापत खर्च प्राप्त गरिरहेका लाभग्राही तथा नयाँ लाभग्राहीहरूले आर्थिक वर्ष 2083-84 उक्त उपचार बापत खर्च प्राप्त गर्नका निम्ति तपसिल बमोजिमका कागजात सहित यही श्रावण 5 गतेदेखि भाद्र 5 गतेसम्म लाभग्राही स्वयं वा निजको निवेदन सहित नजिकका हकदार उपस्थित भई आफ्नो परिचय पत्र नवीकरण तथा नयाँ दर्ता गराउनका लागि टिकापुर नगरपालिकाको जनस्वास्थ्य शाखामा सम्पर्क गर्न यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ
1: तपसिल
2: सम्पूर्ण लाभग्राहीहरूको सक्कल नेपाली नागरिकता र एक प्रति फोटोकपी
1: बैंकको सक्कल चेकबुक र एक प्रति फोटोकपी
2: मेरुदण्ड पक्षघात भएका बिरामीहरूको हकमा नगरपालिकाले जारी गरेको अपाङ्गताको परिचय पत्र
1: नाबालकको हकमा जन्म दर्ता प्रतिलिपि हालसालै खिचेको फोटो 2 प्रति
2: क्यान्सर रोगीहरूको हकमा 3-3 महिनाभित्र निरन्तर निगरानीमा रहेको प्रमाण पत्र खुल्ने कागजात र वडा कार्यालयको सिफारिस पत्र
1: थप जानकारीका लागि जनस्वास्थ्य शाखाको फोन नम्बर 091-560-122 सम्पर्क गर्नुहोला
2: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर
3: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
4: ग्रीष्मा टेरेसमा पाइने सामग्रीहरू
5: नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो,
4: हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुपथ मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेडस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588।
1: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
6: मै नै जाइ, उहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकर्छु।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइको, यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू, तब तू मैं अब भी जाए।
0: याद करबी, मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा प्रत्येक महीना के दोस्रो शनिबार काठमाडौँ के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौन्दर्य रोग विशेषज्ञ डाक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुरमा पुरान से पुरान अनुहारमा रहल चाया, पोटो, डन्डीफोर, दाग, खुजली, भुटला झर्ना, कपार के तालु खुल्ना, डेन्ड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नै हुइल घाव, खतिरा ओ यौन दुर्बलता उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9846777417।
7: विश्राम पाछे फिर से स्वागत बा। अविरल वर्षा पहिरो तथा बाढ़ के कारण देश के तमाम जिल्लामा प्रमुख राजमार्ग तथा सड़क खण्डमा सवारी आवागमन प्रभावित हुई बा। नेपाल प्रहरी से आज बिहान के 5 बजे समके विवरण सार्वजनिक करती कुछ सड़क पूर्ण रूपमा अवरूद्ध हुई बा। गलसे कुछ सड़क रात के सवारी साधन संचालनमा प्रतिबन्ध लगाइल चुनागिल बा। काभ्रे प्लाञ्चोको सिन्धुली जोड़ना बेपिराज मार्गमा सके खुरकोट नेपाल ठोक से लेके कन तुनजेन बेसी सड़क खण्डमा समेत सम्भावित बढ़लक जोखिम हे दृष्टिगत गर्थी। सन्झेके 6 बजे से लैके बिहानके 4 बजे सम्म सक प्रकार के सवारी साधन संचालनमा रोक लगाइल बा। ओसंकरके कान्ती लोकपथ से लैके बिहानक सन्झक 5 बजे से लैके बिहानक 5 बजे सम्म सक प्रकार के सवारी साधन संचालनमा रोक लगाइल बा। इलाम नगरपालिका 9 मेची राजमार्गमा फे वर्षाके कारण सड़क हिलम में रलक ओर से सवारी आवागमन पूर्ण रूप में बंद करल बा। सिन्धुपाल्चोक के भोटकेसी गांव पालिका स्थित के अरनी को राजमार्ग के समेत 0 किलो स्तर के कोडारी क्षेत्र में पहरो गिरलक ओर से सड़क पूर्ण रूप में अवरूद्ध हुई बा। दोलाखा के तामकोशी गांव पालिका 5 किरनेतार स्थित के लामा सांगो स्तर का रामेछाप सड़क खंड में समेत सामकुशी खोलवामा समेत बहाव के कारण से कटान करल पासे उस क्षेत्र में सड़क अवरूद्ध हुई बताइल बा। सक रसुआ के उत्तर गया गांवपालिका 5 खाल्टे स्थित के पासांग लामू सड़क खंड में त्रिशूली लद्या के कटान करला कोर से उस सड़क में फिर पूर्ण रूप में अवरूद्ध हुई बा। प्रहरी से वर्षायाममा पहिरो बाढ़ तथा सड़क कटान के उच्च जोखिम रलक यात्रा करना आगे संबंधित निकाय से सड़क के समेत अवस्था के बारे में जानकारी लेना तथा आवश्यक सतर्कता अपनाइना सबको जहान अनुरोध करल बा। धनगढ़ी में पहल पटक राष्ट्रीय स्तर के ब्लैक स्टोन क्लासिक राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आयोजना हुईना हुई बा। शुक्रवार के ब्लैक स्टोन फिटनेस के समेत पत्रकार सम्मेलन करती आगामी असोज 17 गते प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी सहभागिता जनैना आयोजक से जनाइल बा। आयोजक के अनुसार प्रतियोगिता में विश्व पावर लिफ्टिंग में समेत नियम तथा मापदंड अनुसार संचालन होना बा। प्रतियोगिता में खुला पुरूष महिला
0: खुला महिला, पुरूष स्मार्ट्स ओस्तक, पुरूष जुनियर्स विधामा समेत तमाम तौलो समूहके खेलाड़ी प्रतिस्पर्धा गर्नला। प्रतियोगितामा उमेर अनुसार दुई तौल ओड़के दस्त करके जम्मा 12 समूह समावेश करगिल बा। खुला पुरूषोर 62 केजी से लेके 94 केजी समके और खुला महिला और समेत 53 केजी से लेके 64 केजी ऊपर समके तौल समूह रहल बा। उसका पुरूष स्मार्ट ओड समेत 40 वर्ष उपर को पुरूष जूनियर में 23 वर्ष के समेत तरक खिलाड़ी से प्रतिस्पर्धा करे पैना कहलवा। खुला पुरूष तथा महिला तौल समूह में प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता से 30,000 रूपया, रजत पदक विजेता से 15,000 रूपया और कांस्य पदक विजेता से 10,000 रूपया नगद पुरस्कार प्राप्त करने बाद पुरूष स्मार्ट ओ समेत पुरूष जूनियर ओर समेत यह पुरस्कार के व्यवस्था रहलवा। प्रतियोगिता में समेत समग्र उत्कृष्ट पुरूष और महिला विजेता है जना ही 1,00,000 रूपया नगद पुरस्कार प्रदान करने आयोजक से जनाइलवा। प्रतियोगिता में कुल नगद पुरस्कार पदक तथा उपहार सामग्री के पुरस्कार राशि 15,00,000 रूपया से ढेर रहना बतागिलवा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर मालपोटमा सेवा प्रवाह में ढिला सुस्ती हुईना करलक सेवाग्राही उकरण की गुनासा, सेवा प्रभावकारी बनैना प्रयास रहल कार्यालय के कहाई। देश भर मनसूनी वायु के प्रभाव कायम, आज फिर देश के कुछ स्थान में भारी पानी पर्न संभावना। गोलबजार घटना में गरेश यादव के परिवार और सरकार बीच सात बुधे सहमति हो, सुरपश्चिम में नेकपा भीतर के किचलो, खगराज से मुख्यमंत्री में रोकना मोर्चाबंदी। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते रह राम राम।
8: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
9: साउन 16 गते तेस्रो शनिवार का दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने, बडी रिसाउने, झिझो मान्ने, बरबराउने, अमिलो व्यवहार गर्ने, कामकाजमा मन नलगाउने, एक्लै बसेर टुलाउने, भोक नलाग्ने, निन्द्रा नलाग्ने, दुब्लाउँदै जाने, धेरै रक्सी खाने, लागू पदार्थ सेवन गर्ने,
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने, स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी, छारे रोग, मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या, नकारात्मक सोचाइ आउने, यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
9: डाक्टर आउने दिन साउन 16 गते तेस्रो शनिबार
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म। बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर। टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ।
12: याद गर्नुहोस्, आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
11: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
13: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम, टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई, तहरा राजा जी का दिलवा टूट जाई।
1: उफ बल्ल घरक भीटा निखो रहेगा।
2: मुस्कान पिछाई घरक भीटा आमी निके निवराई छो की का खेतों में सखलालन कलाक मिनी ले जाए पर ना रहा।
1: आप बे उड़ाएगा जानती बादा
2: ले ले वही मिनी बना कर नहीं दिया तू ले जा दियास ना।
1: हाँ बिठा दे। ओहो हेरो यहाँ बिटा मत बिला को बा माटी ने सब दिए पर टीका। हाँ सब दियो। अय्या दाई सब का डरल
2: गई खै खै कहाँ काटल छाई।
1: यहाँ दाई ये दाई ना जम का डरल।
2: अरे लेव हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान हट सब का डरलस लेव हाली।
3: काबिल काकी काबिल
2: हेरो ना राकेश मुस्कान न सपवा करलस कल
3: ना क्या काकी तो मुस्कान न्या क्या का शांत होकर बैठो ना। बेन काकी मुस्कान है ना श्वास का ना सुटाई हर सब निकल रखना।
2: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो टा
1: बैठा।
3: ओ काकी मुस्कान भलक लुगा गर गहना निकब जैना मेकअप फाफर बना रही टा वो हाथक चुड़िया की निकाल दी टा वाकर कटला छाट भर नहीं चला रखना।
2: बैठा भैया सर्पो कटला ठाउक आंदर पांदर चीर का इंजेक्शन ने तान का अथवा मुंह ले चूस का बीस पोर निकलना हो की
3: नहीं नहीं काकी सपो कटला घाव आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई थे नहीं हुई पानी थे नहीं बुझली
2: उसी नो कल से धर मेरा लान खा वही निकाल खा वाकर सपो कटला ठाम और लगा दियो तो ना नानू
3: उफे नहीं हुई काकी घरेलू उपचार जस्ता की झरबैरा जंगली घर बुटी वो जड़ी बुटी फिर प्रयोग कराने हुई बुझली
2: बुझनु नानू बुझनु।
3: बिना काकी रामेश्वरा मोटरसाइकिल लिखाए कहीं झट्टा से झट्टा साधन खोज का एंटी वेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केंद्र में ले जाए सेक जाए कल से मुस्कान होना झट्टा चुमर बनाई सेक जाए दादा आई अपना बिन ओटरा बिलासम हमार गांव से कौन एंटी वेनम केंद्र लगा पर था कहीं का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम दाता हम कह कर हेरा पुरल। हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फिर खुलत हमार गांव से तो मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदंश उपचार कई जिना रही हो वहां ले जाए पड़ मुस्कान होना।
2: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई
3: लेव लेव लेव काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिचा में बैठा रही का झट्टा से झट्टा सर्पदंश उपचार केंद्र में पुगाई सीख जाए कला से मुस्कान होना बताई सीख जाए
2: बैठा बैठा याद करी सपवा डसल से मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बलाई सर्पदंश उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहा कौन सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
4: मोटरसाइकिल स्थापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझल साफ फिर काट से संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी ने देखाई सकल से हुक्र सपो विषाह अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
2: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मन यहाँ बताई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर से दिखा सपा डसलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जा डाई इहीले ऊ मनयक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैसा पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए दिखा।
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
6: पर कान्छाशालाको बिहाको न्युता आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त आफ्ना कान्छा भाइको बे नगर्जन पनि भएन, जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पन भाँची गयो।
7: यतिकै लागि त सामुएल ज्वेलर्स बनाएको है, बरु अहिलै जाउँ, एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ।
6: आज त सन्त्याका बाले मनकै पुरो हर्यो, फोटो त बाई जाउँ।
8: सामुएल ज्वेलर्स सुनचारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। प्रोप्राइटर टेहरी सिंह सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868442408, 9846392061।
9: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्।
10: थोपा थोपामा शुद्धता, अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
11: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ।
9: डेलिभरीका लागि
11: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
9: टिकापुर कैलाली,
12: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870106772।
13: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहा
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़।

0: कबू कापी रहीठ कबू पेन्सिल रहीठ कबू झलै फटाका आजिठ काकना हो काकना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई ठो कबू पेंसिल हेरा कई ठो कबू झोले फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर मर अलग रट गई यहाँ झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब दिन ही जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रत गई यहाँ झोला उद्योग
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई यहाँ संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
4: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
5: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
6: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
4: डेलिभरीका लागि
6: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
4: टिकापुर कैलाली
7: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017 10672
8: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: अम्बिकापुर नगरपालिकाको आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम यही साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको बेहोरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
0: टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर।
2: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? 500 सुरु करल मने घर सिजार सेक्ल।
3: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का
2: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्रफे पटानी हुइन कि गुङ्गुवा बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त थाहा पाए।
4: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेष सहूलियत मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
3: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वा नन्दे भुवाज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उनी ना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा स्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स म से गहना बना कान से के कतरा सुघर बना कन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई आओ जायका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 9864841208 और 9846439261
2: घर त जेनतेन लगाइयो अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
3: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
2: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका
3: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
2: अब त म ढुक्क
4: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
3: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली

0: एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कब्बू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमार यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय में कृषि स्नातक तह में विद्यार्थी भर्ना खुले सूचना
4: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय अन्तर्गत स्कूल अफ एग्रीकल्चरमा स्नातक तह बीएससी एजीमा नियमित तर्फ 100 जना र सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारी 10 जनाका लागि भर्ना खुलेको जानकारी गराइन्छ
3: स्कूल अफ एग्रीकल्चरमा बीएससी किन पढ्ने
4: सुविधा सम्पन्न भवनमा आधुनिक प्रयोगशालामा अभ्यास गराइने
3: आफ्नै फार्म हाउसमा अभ्यास गराइने
4: सुदूरपश्चिमका 9 जिल्लाबाट 1-1 जना र प्रवेश परीक्षाको सूचीमा उत्कृष्ट विद्यार्थी सहित नियमित तर्फ 25% आरक्षित छात्रवृत्ति कोटा रहेको
3: अन्य विश्वविद्यालयको तुलनामा सबैभन्दा कम शुल्कमा पढाइ हुने
4: स्नातक उत्तीर्ण सबै विद्यार्थी स्वदेश र विदेशमा गई अध्ययन रोजगारी र उद्यममा संलग्न भइसकेको
3: अनलाइन र अफलाइनबाट समेत फारम भर्न सक्नुहुनेछ
4: आवेदन फारम भर्ने मिति 2083 साउन 25 गते सम्म रहेको छ
3: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन 2083 साउन 30 गते बिहान 11 बजे प्रवेश परीक्षा केन्द्रहरू स्कूल अफ एग्रीकल्चर टिकापुर काठमाडौँको लागि पछि निर्धारण गरिनेछ विस्तृत जानकारीको लागि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकाय स्कूल अफ एग्रीकल्चर टिकापुर www.agriculture.fwu.edu.np मा लगन गर्न सकिनेछ
4: सम्पर्कका लागि 091-560-265 98-491-10487 98-486-08-306 र 98-462-78-174 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ

0: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
1: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बन्चरो, हट ब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन ऱ्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाँत, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: खैर नि वहाँ बासठ नंबर लट्ठी बा देखाओ तो अच्छा लिखाओ तो
1: मुर्गी दाना देना जा रहा काकर लट्ठी खा देती अब ना
0: एक तो तपा का मुर्गी न खा रखे लट्ठी से डूरे से बक्सा की आनो हारी छट्टा
1: तापन घिस्याई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस सर बेन घर भीतर आई लागी कल से भगेबी
0: पारक भीतर पैट का मुर्गी मुआडी और खाडी कहीं भगाए खोज रखो का
1: आरम कीड़ा फटिंगा मुँह साप फिर निचा करके फलाम को जारी लगा बात तप्पा मुर्गी खेती बुगाई नहीं देखी बेन अपना दाठी दूर रिना
0: हो बिना तो क्या करना हो तप्पा देखती की डर नाग लगना रही था देव तप्पा तो अपन घूम का बारी वो कल दिन
1: हमारे जेल सापन से डरे ना नहीं बोली मुखरथी हमन से डरे।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417
4: समुन्नत समाज का लागी समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज़

0: आइहो बड्डो, घर कहिया सिर्जैब? पाछसे शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल?
1: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन हो का ना घर हेरो ना कटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
2: यूपीबीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानियों घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848 51 43 26।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजीव 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने उखरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हमारा पात्र नेपाली पात्र मफे सुन्दी रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से जानकी गांवपालिका द्वारा पालिका भीतर के 43 जना कर्मचारी की आंतरिक सुरुआत। तिरुपति विश्वविद्यालय के भवन में से हम फाल की विद्यार्थी की मृत्यु। सुदूरपश्चिम में सुरक्षा सतर्कता बढ़ना मुख्यमंत्री शाह के निर्देशन। ओ वर्षा में पानी जन्ने रोके जोखिम बढ़ो सरसफाई में विशेष ध्यान दिन आग्रह। पूरा खबर जानकी गांवपालिका के भीतर 43 जना कर्मचारी आंतरिक तथा बाह्य सर्वकलबाट सर्वकल कैयो पालिका भीतर के शाखा कैयो वड़ा तथा स्वास्थ्य सम सर्वकलबाट पालिका 6 जना कृषि प्राविधिक 9 जना वड़ा सचिव 5 जना पशु प्राविधिक 26 जना स्वास्थ्यकर्मी 4 जना सहायक 3 जना प्रशासन के कर्मचारी सर्वकलबाट फिर 3 जना नेपालिका मसे सर्वा होके जानकी मैलबाट सर्वा निमित प्रक्रिया हुलक सर्वा हुलक सूक्ष्म सकारात्मकता ऐना एक ठाउँ के अनुभव और ठाउँ में काम करना सजिलो हिना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्ट बोटिलबाट जानकी गांवपालिका वड़ा नंबर 8 के वड़ा सचिव परमिला शर्मा वड़ा नंबर 3 सरुआ हुलबाटी वहां के प्रशासन महिला विकास सुटी अब वड़ा सचिव होके काम करती रहलबाटी एक वड़ा में से और वड़ा में सिखिना हुना फरक ठाउँ में से अनुभव हुना वहां के काहिर हलवा। जानकी गांवपालिका वड़ा नंबर 9 के सचिव आनंद उपाध्याय अब पालिका के प्रशासन शाखा में सरुआ हुलबाट इनसेग वहां के सहकारी शाखा प्रमुख वड़ा सचिव के जिम्मेवारी संबंध बाट काम करती सिक्ति जैना हुलक फरक फरक क्षेत्र में काम करना पैल सिकाई हुना वहां के काहिर हलवा। कृषि प्राविधिक चक्र प्रसाद भाट लम्बा समय से वड़ा नंबर 8 और 9 में कृषि प्राविधिक होके काम कलबाट अब 7 नंबर वड़ा में सरुआ हुलबाट वहां लम्बा समय में 1 ठाव में कृषि प्राविधिक होके काम कर पैल जनप्रतिनिधि कृषि के मायासंग कृषि के क्षेत्र में मजा सिकाई हुलक अनुसार अरू ठाव में काम करना बोटिलोट पालिका कर्मचारी के सर्वकरण संघ धीरदर्शी वड़ा में अलग स्वागत सरुआ होके गैल कर्मचारी विदाई करना कार्य जारी रहा। यही बीच में जानकी गांवपालिका वड़ा नंबर 9 फे जैना कर्मचारी विदाई व ऐना स्वागत कलबाट कर्मचारी विदाई व स्वागत करती वड़ा अध्यक्ष खगेन्द्र भंडारी सरह होके जैना कर्मचारी और ठाव में से फे मजा काम करना सुझाव देती अलग कर्मचारी संघ वड़ा मजा बनना सहकार्य करना काम करना बोटेलबाट। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा देना जैलक एक विद्यार्थी के भवन मसे कुडुकी मृत्यु हुआ। शनिवार विश्वविद्यालय के दोसरो तला मसे कुडुकी गंभीर घाइते हुलक बेटकोट नगरपालिका 4 बगुन के 23 वर्षीय उत्तम सिंह कार्की उपचार के क्रम बाट प्रारंभिक अनुसंधान अनुसार शनिवार विश्वविद्यालय में स्नातक तह होटल व्यवस्थापन बीएचएएम प्रथम सेमिस्टर के प्रवेश परीक्षा देलपा कार्की दोसरो तलमसे कुडुके जिला प्रहरी कार्यालय कंजपुर जनेलवा शनिवार बिहान के 8:15 बजे होट शुरू हुई प्रवेश परीक्षा में सहभागी होके 9:15 बजे कक्षा कोठा मसे बाहर निकल के कार्की भवन के दसो तला मसे रेलिंग शहर के कुडुकलबाट घटना लगत एम्बुलेंस मार्फत गंभीर घाइते कार्की उपचार के लाग महाकाली पारदेशिक अस्पताल पुगे रहे कपारी मौसरी के ढेरोसिन भाग में गंभीर चोट लगभग प्रारंभिक उपचार पास थप उपचार के लाग धनगढ़ी स्ट्रीट मायामेटो अस्पताल रेफर कर गिल अस्पताल पुगिना संघ चिकित्सक वहां की मृत घोषणा कलक जिला प्रहरी कार्यालय प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएचपी टेक बहादुर रावत जानकारी दिलाट मृत कार्की स्थानीय व्यवसायी पदम सिंह कार्की के छावा छोटकी छावा रही वहां के बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय में से माध्यमिक तह प्लस टू उत्तीर्ण हुई रहे घटना के कारणबारे थप अनुसंधान हुटी रह प्रहरी जनैलबा। खोज खबर में एकरी विश्राम विश्राम पास फिर से विश्व तिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे, बीबीएफ का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे।
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, नेपाली, हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे।
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश, डेभलपमेन्ट स्टडीज, सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स।
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे। कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस।
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको।
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड दिइने।
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने।
2: आईसीटी, इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज, उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप।

0: अनुभव दहाल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुरमा सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लग्न आपन भवनसे सेवा देटी रहल सक्कु बेरमहेन जानकारी कराइटिए। सत्कार पोलिक्लिनिकमा बिहान 7 बजे से सन्ध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरमहे उक्रा सम्पर्क कैके उपचार सेवा लिह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाथ जोड़नी सेवा टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेले जाए। सम्पर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टिकापुर कैलाली फोन नम्बर 091-560-095 ओ मोबाइल नम्बर 98-48-42-73-59।
1: सुदूरपश्चिम प्रदेशके मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह सुनसरीकी कप्तानगंजमा हुलक दुई समूहबीचके झडप पाछा उत्पन्न परिस्थितिमा मध्यनजर गर्दै प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढ़िना निर्देशन देलाबाट मुख्यमन्त्री शाह जारी कला कपीमा खुल्ला सीमाकी कारण हुइसक्न सम्भावित घुसपैठ तथा अवैध गतिविधि रोक्न सुदूरपश्चिमकै सीमा क्षेत्रमा विशेष निगरानी बढ़िना सक्कु सुरक्षा निकाय निर्देशन देला उल्लेखलबाट प्रदेशकी सक्कु जिल्ला तहकै प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय समेत पूर्व सतर्कता अपना सुरक्षा व्यवस्था चुस्त धरना निर्देशन देलक वहाँ बोटिलोबाट सुनसरीकी कप्तानगंज महिलक झडपो ओमसे सृजित परिस्थिति के प्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण हुलक जनैती मुख्यमन्त्री शाह घटनामा ज्यान गुमायल प्रति श्रद्धांजलि तथा शोक सप्त परिवार जन्म संवेदना व्यक्त कलबाट वहाँ घटनामा घाइते हुलक सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मीकी शीघ्र स्वास्थ्य लाभकी कामना समेत कलबाट मुख्यमन्त्री शाह नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक व बहुधार्मिक विशेषता बोकलक मुलुक हुलक सामाजिक सहिष्णुता भाईचारा व सद्भाव कायम धरना सक्कु साझा जिम्मेवारी हुलक पोटिलोबाट वहाँ कोनो फेर बहानामा हुइना हिंसा आपसी द्वेष र अराजकता के कोनो फी हित नै कना कति सामाजिक सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सव मनैना अवरोधनके भावना शान्तिमा असर नै पर्ना करके मर्यादित रूपमा मनैना आग्रह गर्नबाट सामाजिक सञ्जाल मार्फत अपहाव किर्णास्पद अभिव्यक्ति तथा भ्रामक सामग्री फैलाकी सामाजिक वैमनस्यता सिर्जना नै कर्न फे उहाँ अपील कलबाट सार्वजनिक अपवाह फैलिन तथा गलत सूचना सम्प्रेषण गरे समाजमा उत्तेजना घृणा व वैमनस्यता फैलिन जुन रलसेफे कानूनी दायर मलना उहाँ स्पष्ट पर्लबाट कोनो हातमा लेन सद्भाव भट्केनाउ समाजकी अराजकता फैलिन तत्व हुकन कानूनी दायर मलना राज्यकी निकाय सक्षम रूपमा जुट पर्ना मुख्यमन्त्री शाह अपील कलबाट उहाँ संकट के हे घड़ीमा नागरिक तथा सरकारवाला निकाय स्वयंधरे तापनैति सामाजिक सुरक्षा कायम गर्न स्थानीय तह तथा प्रशासन सहयोग गर्न आग्रह कर्लबाट संघ आम संचार माध्यम सामाजिक सद्भाव आँच ऐना खालकी सामग्री प्रसार रन नेकर के सत्य तथ्य वस्तुनिष्ठ समाचार के लिख सम्प्रसार गर्न आग्रह कलबाट गृहमन्त्री सुदन गुरूङ सिराहाकी गोलबजारमा गोली लागी मृत्यु हुलक गणेश यादवकी परिवारसँग 8 बुदे सहमति हुलक बोटिलोबाट लहानमा जिल्ला सुरक्षा समितिकी बैठक पश्चात गैल राति गृहमन्त्री गुरूङ यादवकी घर सिराहाकी औरही गाउँपालिकाके तुलेही यही पुग्ल रही मृतकी यादवकी दाई बाबा तथा आफन्तसँग हुलक छलफल 8 बुदे सहमति हुलक मन्त्री मोटिलोबाट मृतकी परिवार धरलक घटनाके निष्पक्ष छानबिन हुइपर्ना दोषी कार्यवाही करपर्ना क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइपर्ना मृतकी परिवार सदस्य निशुल्क शिक्षाके सुनिश्चितता करपर्ना लगायत मागमा सहमति हुलक गृहमन्त्री गुरूङ जानकारी देलबाट यही बाहेक सरकारके तर्फ बसी मृतकी दाई बाबा निशुल्क उपचार गर्न परिवारकै सदस्यसँग रोजगारीकै सुनिश्चितता गर्न सहमति हुलक उहाँ बोटेलोबाट गोल

0: खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटू। मिलबो मिलबो निकरत का कैना हो का
1: मिस्तरान बर्जन औकन घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढो हो ना कबू कहूँ घुम जाए त था पाए।
2: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
0: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
2: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में बच्चा देखि बुढ़ा सम्मा टाउको देखि घुड़ा सम्मा को उपचार
3: टीचिंग हॉस्पिटल बाट एमबी अध्ययन गरी अनुभव प्राप्त फैमिली फिजिशियन डाक्टर सरोज खनाल बाट बिरामी को जांच तथा उपचार हुँदैछ।
2: आरोग्य मेडिकल मा पाइने सेवाहरू
3: दीर्घ रोगीहरू उच्च रक्तचाप मधुमेह थायराइड दम सीओपीडी
2: नवजात शिशु देखि वृद्ध सम्मको सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा
3: बालबालिकाको स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार
2: महिलाका समस्या गायनोलोजिकल समस्या गर्भावस्थाको जाँच
3: सामान्य रोग ज्वरो खोकी पेट दुखाई लगायतको उपचार
2: आकस्मिक रोगको प्रारम्भिक उपचार र व्यवस्थापन
3: र हाम्रो यहाँ भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ।
2: सम्पर्क आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुर
3: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म र साँझ 4 बजेदेखि 8 बजेसम्म।
2: सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772।
4: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
5: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808।
6: वर्षायामसँग हैजा आउँ निमोनिया रुगा खोकी तथा टाइफाइड जसिन पानीजन्य रोगके जोखिम भर्ना गर्दै शुक्रराज टफिकल सरुवा रोग अस्पताल के झाड़ा पखरा लगायत के पानी जन्य रोग के बिरामी भर्ती गरी अस्पताल के अनुसार अस्पताल के ओपीडी में अन्य अधिकांश बिरामी झाड़ा पखरा टाइफाइड निमोनिया रुगा खोकी लगायत के लक्षण लेके अस्पताल में पुग्न कलबाट अस्पताल के सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन गर्मी तथा वर्षायामसँग हैजा आउँ निमोनिया रुगा खोकी तथा टाइफाइड जसिन पानी जन्य रोग अन्य बिलाके तुलनामा बढ़ी फैलिना कर्ना दूषित पानी सेवन कलसे सामान्य से गम्भीर झाडा पखाला के स्वास्थ्य समस्या निम्तेना डाक्टर पुनके काहेबा दूषित पानी मरलक हानिकारक जीवाणु पेट बठेना जुरियाइना बान्ताओ पखाला लग्ना जण्डी शरीर बठेना कलेजोमा संक्रमण हुना जसिन रोगके लक्षण देखना उहाँके काहेरहल्बा डाक्टर पुनके अनुसार लम्बा समयसम्म दूषित पानी पिना रोके प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुलकसँग मृगौला कलेजो दीर्घकालीन असर पुग्ना हो। डाक्टर पुनके अनुसार झाडा पखाला दूषित पानी मसे खैना चीजमा हुना गर्दै झाडा पखाला लगलग बारम्बार पाते दिशा लग्न पेट बठेना आदि लक्षण हैजा दूषित पानी वो खैना चीज मसे गम्भीर खाइते संक्रमण रोको यस संक्रमण मसे अत्याधिक पाते दिशा हो हाली निर्जलीकरण हुना सेक्ना हो टाइफाइड दूषित पानी हो खाना मसे सर्ना लम्बा समयसे जुरियाइना कपार बठेना कमजोरी हुना जस्तै लक्षण देख परलवा हेपाटाइटिस ए हो यी दूषित पानी तथा खैना मसे सर्ना सक्ने जुरी वाकवाकी भोक कम हुना हो आँखी वा छाला हड्डिया हुना जसिन लक्षण देखा पर्ना हो। दूषित पानी वा खाद्य पदार्थ के कारण पेट बठेना बान्ता पखाला लग्ना जसिन स्वास्थ्य समस्या निम्तेना गर्दा बाल बालिका के ज्येष्ठ नागरिक रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुलक मनमा बढ़ी जोखिम हुलबा उहाँकै अनुसार वर्षाईमा पानी जन्ने रोगमासे बस्न खानपिन तथा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिएपना गर्मी तथा वर्षायामसँग फैलना झाडा पखला तथा हैजा जसिन पानी जन्ने रोगमासे बस्न बासी सरल गरल झिंगा भन्कल खैना चिस्ने खेना डाक्टरकै सुझाव।

भलवा बासी व सरल गर तथा झिंगा भुनकल खैना चिसे नै खैना उमालके वा क्लोरिन झोल दारके शुद्धिकरण करके पानी पीना वहां के आग्रह बा। वहां के पानी क्लोरिन झोल व टैबलेट दारके उमाल के पानी शुद्धिकरण कर सकिल पीना अनुरोध कलबाट। इस समाचार संग खोज खबर वाले जिना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो जानकी गांवपालिका द्वारा पालिका भीतर 53 जना कर्मचारी के आंतरिक सरुआ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय के भन्मसे कुडुके विद्यार्थी की मृत्यु सुदूरपश्चिम असुरक्षा सतर्कता बढ़ेना मुख्यमंत्री शाह के निर्देशन ओवरटाइममा पानी जन्ने रोके जोखिम बढ़दो सरसफेमा विशेष ध्यान देना आग्रह दीता बुकला खोज खबर अथवा प्राविधिक मित्र दिपेन्द्र भट्टराई यहाँ धन्यवाद दिए अब अगला खोज खबर से मैसी जाता हूँ फिर विदाई टू एगार पास 6 बजे के खोज खबर सुनना सीख भी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रहे।

0: ओहट हेर बुढ़िया बरखक समय थे बा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसवा आयल कला से आब मुसवा खुशी सपोफे आई सकता
1: ओहो होनिका ठाक समझनो फरक आंदर पादर जफास से बाहर से कच्चा का पहिल बा काट पर ना रह
0: असी करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कला से काल मिट्टी ना वो तेला रोटी पका कर बासी छाई दूसरा सर परिवार मन मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तनी भी
1: था हो बुढ़वा असिन जाला मदर ध्यान घास पोहर झपास भी था मा साथ नुख बैठल रह सकते ना
0: वो हो से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू वो मई मिलकर भरत आंजर पांजर रहल ध्यान ध्यान घास काटी कालिक लानल काटे थे घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुकर के सांप मुस्कुसु के पैठनी सेकना में चपट डार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा फूल से साफ कहना का उत्साह कम हो जाए
1: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुसत थे बा
2: सात बरखा छागक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था इ मौसम में आपन बस्यारा में पानी पैठना पीला कोर से सुखा ठाम का खोजी में होकर बाहर निष्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसे पता लगाए लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: कुनै प्रकारको रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादनहरू
1: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधवार दिन के एक बजे से अपने उगन थारु भाषा के कोई गीत मन परत
2: जब देखनो तुहिन है
1: यदि मन परत कल से अपन मनन सुनेना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0991-5162555 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में

0: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वा नन्दी एक भुवा जागिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनैना पट्टा नि पैना त
1: अरे गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाएका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाएकन ल बाटी
1: ए ले ले ठिके बा चल हाली भात वट खाई हो जाएका हुँ सामुएल ज्वेलर्स में गर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41 208 और 98486 39 261।

उल्टिरहल बा। सम्पर्क मनिष मेडिकल हल अस्पताल रोड टिकापुर, फोन नम्बर 9860071024 ओ 9806477।

0: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग अपन भवन से सेवा देती रहल सक्कू बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उकरा संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा डिजिटल वीडियो एक्सरे ईसीजी सेवा डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कू रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा हाट जोड़नी सेवा टूटल हाट जोड़नी में प्लास्टर सेवा ईएनटी सेवा सुरक्षित मातृत्व सेवा गर्भवती जांच सेवा यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली फोन नंबर 091-560-095 ओ मोबाइल नंबर 98-48-42-73-59।
1: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में नया विद्यार्थी भर्ना खुल्यो।
2: टीकापुर बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह का विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2083-84 में नया विद्यार्थी भर्ना का लागि प्रवेश आवेदन फारम वितरण भइरहेको ब्यौरा संबंधित सबैका लागि जानकारी गराइन्छ।
1: संकायहरू व्यवस्थापन संकाय तर्फका शैक्षिक कार्यक्रमहरू
2: बीबीए र बीबीएस ऐच्छिक विषयहरू एकाउन्टेन्सी फाइनान्स र मार्केटिङ
1: प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र समय बीबीए का लागि साउन 17 गते बिहान 8 बजे बीबीएस का लागि साउन 17 गते बिहान 10 बजे
2: शिक्षा शास्त्र संकाय बीएड ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश नेपाली हेल्थ एन्ड म्याथमेटिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 23 गते बिहान 11 बजे
2: मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय बीए ऐच्छिक विषयहरू इंग्लिश डेभलपमेन्ट स्टडीज सोसियोलोजी एन्ड इकोनोमिक्स
1: प्रवेश परीक्षा साउन 24 गते बिहान 8 बजे कक्षा सञ्चालन भदौ 1 गते देखि।
2: क्याम्पसका विशेषताहरू विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट 1 वर्षदेखि निरन्तर गुणस्तरीय सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन क्यूए प्राप्त सरकारी क्याम्पस
1: कुल विद्यार्थी भर्नाको 25% विद्यार्थीहरूलाई पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था भएको
2: न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिनुका साथै अनुसन्धान तथा नव प्रवर्तनमा जोड़ दिइने
1: पीएचडी तथा एमफिल गरेका अनुभवी प्राध्यापकहरूबाट प्राध्यापन गराइने
2: आईसीटी इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज उद्यमशीलता लगायतका विभिन्न नन क्रेडिट कोर्सहरूका कक्षाहरू तथा विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिने
1: उपचार कक्ष ई लाइब्रेरी फ्री वाइफाई प्रोजेक्टर डिजिटल स्मार्ट बोर्ड सहितका कक्षा कोठा शुद्ध खाने पानी प्राथमिक उपचार कक्ष व्यवस्थित क्यान्टिन खेल मैदान लगायत सुविधा सम्पन्न भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भएको
2: सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सम्बन्धन प्राप्त देशभरिका अन्य क्याम्पसहरूमा समेत स्थानान्तरण गर्न सकिने
1: कक्षा 12 को पूरक परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीहरूले समेत प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन सक्नेछन्।
2: थप जानकारीका लागि क्याम्पस प्रशासनको फोन नम्बर 091-560-088 र 561-088
1: टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस टीकापुर कैलाली।

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओष्ट बाटिन गतिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान निहरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक्ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

यस्तो नहोस् अब कतै नपसोस् न खोला, यस्तो नहोस् अब कतै नपसोस् न खोला। बिन्ती निवेदन यही प्रभुमा छ मेरो, आपत विप

0: ਆਸਾਉਂਦਾ ਮਾਸੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਨੇ ਦੀਵਾ ਕਰ
1: ਹਰੇ ਆਸਾਉਂਦਾ ਮਾਸੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤਿਨੇ ਦੀਵਾ ਕਰ
0: ਮਹਾਰਾਜ ਪਰੀਕਸ਼ਿਤ ਲਈ ਸੁਖਦੇਵ ਲਈ ਬਤਾਉਣ ਭੋ ਇਹੀ ਭਨੇਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਸਹੀ ਤਾਂ ਉਦਾਉਂਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਕੋ ਰੂਪ ਮਾਜਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਆਸਾਉਂਦਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਾਇ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਵਸੁਨ ਜਲ ਮਾਤਰੇ ਹੋ ਗਈ ਆਵ यो विश्व ब्रह्मांड सारा संपना आपनो शरीर में ही हो महाराज शीर बने को स्वर्ग मर्ते बने को पात मय नाभि पाताल बने को पाइताल सूर्य र चंद्रमा बने को आंखा हई तो यू आंखा बन्न भो भने 12 वटा सूर्य उदय पे उज्यालो हुन्छ र नाक बने को 49 वायु 10 वटा दिशा बने को कान लाज बने को चाहिँ तल्लो ओठ लोभ बने को उपल्लो ओठ लाज राय भने तल्लो ओठ चेप जन्दै हो कि हैन वाचम यम ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र मरुत सुन्नुहुन्थे दिव्य स्थवीर वेदी साङ्गे पदाक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्याना बस्ति तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तम न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पृष्ठे भ्रमृद मन्दर मन्दर रगि ग्रमे कण्डुजना निद्रालोकमट कृतरे भगवतम श्वानानिलं पान्तु एत संस्कार कला नुभरत नमलाम यात यात मतन्द्रितम जनने दृणा देवी विश्रमेति पुराण संघ समूत माध्यम से प्रयोजन दानम दान से महात्म प्रदेश निबोधत ब्रह्म दश शास्त्र ने पद्म पंच षटा नीच श्री वैष्णव त्रय विंशति चतुर विंशति शैवगम दशाष्टौ श्रीमद भागवत नारद पंच विंशति मार्कण्डे नव भन्नौ तो दश पंच चतुर्शता चतुर्दश भव्य सुंदरता पंचशता दशाटो ब्रह्म भैवर्त लिंगम एकादश भवत चतुर्विंशति बराय गति सहस्रगम कन्नम शत तदाश बामन दश कृतिताम क्रम शब्द दशाख्यात मतम तत्व चतुर्दश व्यको विंशति सौभ्रण ब्राह्मण सद शिव तुम एवं पुराण सन्द चतुर्दश उदारित अठादश श्रीमद भागवत विंशति हेम अव्यम श्रीमद भागवत विंशति हेम श्रीमद भागवत मिश्रते हे इदं भागवत नाम ब्राह्मण प्रणामी पंकज हे चिदाय भवति करुणाय प्रकाशित माध्यम अवसाने शुभम वैराग्य ख्यान समेत हरलीला कथा प्रात नृत नंद सत्सुरम सर्वेदांत सारम दर्शन लक्षणम यश दिव्य तरणी कबिल प्रयोजने प्रवृष्पद प्रणमाशी यम सिंह समन्वित दधाति भागवत सहंति प्रमाम गति महाराजन प्रणानी सदाम गणे यावद भागवत नाम श्रुतिमृत सागरम सर्ववेदांत सारम श्रवंत श्रीमद भागवत मिश्रते ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ನಮಸ್ತೆ ಭಗವತಿ ವಾಸುದೇವಾಯ ಶಾಸನೆ ಇದಂ ಕೃಪಯ